गुड मॉर्निंग लिसनर्स, आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद और अगला कार्यक्रम है रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन कैनबरास मल्टीकल्चरल सर्विस FM 91.1। आज है रविवार 3 मई, तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।